कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं प्रतिघात फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज, सुशील कुमार और साथियों की आवाजों में। शब्द और संगीत रविंद्र जैन का है।

आकाशवाणी का ये पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। आपकी फरमाइश, लीजिए सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत।